0: दस नो है रहे गलत है पेली दा
1: कहीं नो मोई पाना यु मम्मी गई दा वाकिंग चक्रगा उराव थराव दना हन बिरे इजुबो कई दौरगे
0: हाय हाय मामा इबी हाय चलो चलो इरु मचे जरूर आई सुलु जरूर के को पिंगो फिसेंग होंगो हाय लाइ खुरो मुसिको चलो चलो
1: कहीं नो
0: चलो
1: मोई पाना तो इजुबो मागी से मोंग अमने हाय हाय हाय लाई मा हाय
2: इमा
1: थोय हाय नोई ना पासे कई नोम तौरे ने नोई बो प्रब प्रब लाउ ने नोई बो
3: इमा इकु बो कई दोरे हेबनो
2: इमा बाबा कई दोरगे
1: हाय ना पासे वॉकिंग चपद हेलो योंगना र प्रखंग दि हेनी बो
3: होय रो हाय सिबो
1: हाय थोय चलो प्रेत अमद ने खुजु ले खाम दो मई थार ग पोरो हाय हाय ngai खो ngai खो मे कुक सु हा पो उ को
3: थोय से ओके
1: ना पासे मई अमुक तो ओखोक्सी
3: ओखोक्सी इमा
1: हाय लैमा
3: इमा
1: नंग ने खुरा चावन माय बदो अंग त कौ सु चलो
3: इमा नुपी न बाय ब कौ बसे फति हाय न बदा ने
1: नुपी न माय ब कौ ब कैदो एगे चलो चलो चलो पाउ
0: हाय हाय हाय मामा हाय लैमा
3: इकु बो
0: हाय थोय
2: बाबा
0: सारी कि नोई नोई हम ना सुया मखे लागे बिसे वहा नोई ngasi de na na yang de li sei sina san tharo ro noi
3: to to to to
1: to li sei na kan ge hai re isu ro ba
3: hai hai
1: si de ka mai tong ni si
3: mai
1: hai
3: ngangi
1: lei ma nang bu mai ba du khra thu nong to ku chu ba du noi bo
0: tang la la la ngasi de na thona pha bi kana no thoro mai ba ko ba
3: ba mai ba ko
0: sei sina
3: I mai nga maroi ai ngai ko bu nga maroi ko ima
2: ma se khujul kha mai bu do sida lei re
1: kada kada
2: mai thar ba ni
1: ima da piro kada
3: se
1: ha ba se
3: yo yo
1: to ba sa bie ma nang ji o to na su pang re da ko kai da ge nang bu me kru chi khra ya ma ha ba ga mai khu do wa wa ka la pa ya drai ba
0: to
1: moi ba se khujul kha m se ang to bu thok si helo yo ge ra sar yo yo ge ra tam na lai yo ge ra bhut yo ge ra moi pa da sang ni do खोजु लेखरा में क्रुकसे मनम खांग बंगम ददने माइन चचक रदो पनी
0: से से से दो मामा गाओ हम तो नाखो नंगो ने संगी बा पंगलाई दो मधु हानम तो तांथो नंगो को को नत्र बिने ngasi नंग हन थंग द नंग ना पाम सोय दने यौर
1: न मोय बा से अंग त पिंग क पिर खिनु से अंग त सगो खिनु कै दौ रगे
3: होय होय इकुबो ए खै पाख पर लोय रे है बा
0: कै
3: दौ रगे इकुबो पो
0: लैमा नोय बो कना ना पाख पिउ हाय गे मे आइ क छु तौ दे नमा न मथो मनम खंग ना परांग द लंग बने है मे
3: हाय सिबो ओइन किरो
1: मोय बा ओ क छु तौ दे बा
0: मे
1: mai pe mai mai pe ma ai dine pakat pana ne mi hun ga se a lawai lu tu ne prang prang chung na lai ru ri si
3: iku mo ke muk ta tau da ba ma tau si da ai khoi di humang kan ne ba thoi mai ni ma ne
0: nang jo ne nang jo koi be ma na nem po ka pa ba da ya do se noi di ya hok theng ba ne nang si ki pau se param ki ro ya
1: kai pau noi ku ba
0: ai na pai di ba pau se se ma si de i ri phi ye ngoi me
3: thoi
0: ai thoi se nang hou nang ku pa ro se नन्नम मग नमा जंग तान
1: पारो
0: छे छे छे छे
1: पारो पारो पारो
3: करी पाउनो आइन पादु छु बुकै मतांगनो ब
0: इहे सिदे यावरी ब उसी एक ललोन ब म कसुम संग यौखरे हरिप सिनी ने पारो हरिप छे छे कोमा सेमिकोलन वाला मैया देखो
1: बेमा नपा न वजा ओइरिंगे की आंगांग द लाइरिक ताक बगी मतोंग दुनी हाइरि छे
0: हाय आंगांग ओगेरा हल ओगेरा नापु अरुमयांग खाइदन लाइरिक पाबगे सोबे यामलेबनी को चेक्सेलो येंगो इसिंग दंगा सारी इन पागत बदुदा इसिंग दंगा सारी इन पार भी करी हुई नहीं हाँ करी हो जोर गया बा माता ईशा है शाद है सारा दना ओए लिसे ही है कौन को
1: हाउडे हाउडे को भागी मौई पागी ने अमा ताऊरे लिसे अमा ताऊरे लिसे नती आई की नंगन जी बु मौई पान अंगांग हो रही है कि कंजे ईशा ना बम लंबा तो वही ना उबी रब राई बा ओ मौई पान ने लाइरिक पाप की अरुम मयां खाई बगुम ना लिसै सिजिन न बंगिने मफम मतम सु खाइबि यो
3: ना खुसे इमा अमुत नाय खोबा आइने बाबाने हारि ब पाउसे अमुत पार केबा
1: थुन न
3: ताउबा
1: पारो पारो थोय
3: मसाना न चिंगलेमबा जेम्स हाइबदि असेंग ब ममिंग नते जेम्स कौबा निपा मगी फजब कारडा आइखोय पुइना हाइबदि अमर फेल्कन तरा पुरमबदगी पुलिस न फारे मरी लैनबा वायन संगदा लुपा लाख अमा वाकोंग लगा था तराशु कशुम संगद लैनबा थाजिनख्रे नुमित तरानीगी मनुंगदा वाकोंग सेन सुन पिद्रबदी कशुम संगद लैबगी मतम था तरा अमुक संगदोकनी
1: मोयबा नोइन हाइनरी सिबु कयाम जाव सांगबा कया याम न मतिक मयाय लिबु उसिमु चैराक सु याम न कल्लि सिबु
0: अ दुदे हाय मामा से सुमदोर छि नंगी नोपांगोक दो टेलीफोनम ततो ngasi nongwa jing ngoi bani na ma yum da lai ram ne ba ko
1: ngi
0: mak lao sak so akhoi da sa si ya yo Madi Poreso Pisanina, man, Hibernay and a Maricumani.
1: Oh, Jimmy, Jimmy, Mamma,
4: Ibai, Nashel Kurumjari?
0: Ah, la la la.
4: I call you, woo. Curry Lady
0: Bash, I know. Nashidi Nabai, Toyam, my hey.
4: Ah,
0: I don't know. I see about another superacquire. No, my young shoe, but in a sack, I mean, she had me that.
4: Oh, I did you, young Pavo, one in Ibai. Nashi, woo, Ibaigi, Ipo, no mica tab, Ibai.
1: Nashi, eh? No, in a baggy name upon Mica, a mat, the heck not take all. Kana no amana kari ye ye a akhoi puina haibra kaino isi edi masak pu khangja laksa de da uchi e khara puram bagi police na phara ga ne kai shum jang yau gre na hai madu gi mi do mapunji chupa awa pham da leina na ba lai khuru musi edana noi na bai na hai ri as khang re da angau na bai se ahal loirak pagi ra kaino ngang na ba ka se yam na wa khre bu
0: angau khang re he yai sho Nasi na ingang na buwari bra na traga aina nasi se na buwari bra kainom di le he adu wakhal le nasi da na

0: Là, iremba tamhing lungi khunjing gi maming nga teni de xie.
1: 我 啊，一切看看，一切看看。
0: 啊是，有些我阿是去看过里边的呢，
1: 嗯，
0: 农民看了那个门弄的，爬龙啊，都个保险
1: 嗯，
0: 的保啊，都打给的。
1: 哦，
0: 只有罗那边边达拉玛里的，
1: 啊，
0: 伊人那那边边达拉玛班的，
1: 嗯，
0: 啊都个啊巴拉那一个人个呢，那边边古德里的，曼尼普他都个，卡巴拉斯里兰卡嘛给帮给的呢啊，卡阿非卡的通的。
1: 啊，是妈妈，哎，可以呢，木得有文案子吧？嘛胖伢子呢呢，嘛可以呢，十里岁，
0: 嗯，
1: 我
0: 妈
1: 问
0: 的
1: 你呢
0: 妈的
1: 嘛，
0: 妈，
1: 妈呢，哎，可以说呢，嘛可以跟那摆文案子的，俺弄爱你可以
0: 是
1: 呢
0: 的
1: 嘛，
0: 个
1: 妈
0: 呢，
1: 呢。
0: 卡阿非卡的，莫那宁他们他路的不好吧？麻烦都给，马上改呢来的吧？定来冲的行不？啥个嘛等贵呢？南昌拉那摆了不给，穿他了吧？上多嘛都太，
1: 别别，妈妈呢，嘛啥心态不懂呢。
0: 喂，卖还大嘞？啊，宁他们他就来了，啊，都个，马上就改了呢呐。英里星阿尼嘎，苏那坤灭的，莫伊奥胡木，莫伊马给帮耶。巴乔他不沙木德，阿拉比安西吉马特拉那拜了个呢，阿旺侬不帕尔吉马潘金达木要嘞。
1: 阿杜迪，他们弄的阿姆哈拉艾妈妈。
0: 哈勒布兰比西的呢，莫伊他们弄的香姆德。
1: 耶。
0: 阿都个，英里星阿尼苏那坤马里吉，那边本尼潘达，马尼普勒吉拜吉巴，吉乌伦都还能明吞吧？啊，可以不拿阿玛迪。阿非加的个哈勒布兰比达，曼尼普的么他们卡布兰米，阿都个，努米库尼木巴尔个，拉西阿都米奥基，
1: 아두 마마 한 바기 주론 이랑 아두가냐 바라키 와리도 카타 비오바
0: 아, 뭐이 아홉기 통나 파북이 와리지디냐, 앙악뻔이, 시울론, 아두가 이랑나냐, 바하라따 마 땀 카라 람달 람마가, 좀드링나, 마룸 마사코팜, 지나 라시아 다 무통기,
1: That's good. Ma khoi do mana pi ba yai ba. Adu
0: Yeah.
1: gane mama. Ahan ba pitri bi gi lan jaw da lan gi pau. Chithi thok pusin taw ba. Khunu ama su mana pi khi hai ba dai na.
2: Kai nu noi me ama nga ngari si bo.
1: As ima.
2: Khunu da bu mana ka mai tong ne pi ri ba.
1: Ima. Thoi na hari ba khunu sigi wari si di ai su tare. Mahak France lepa ki chir ami kau ba khunu ne. Mahak ne yik na bagi lan ban ma thak ta ne. Thauna pha na pai ki bagi wari tar ba di ne. Ima su nshi ba po ka ne.
2: Kai nu ne hai si bo. Khunu na lan yao ri ba.
1: Oi.
2: Noi ge si. Phunga wari ga di na tie po.
1: Ima phungawari na tiye asing ba thok dok ne France londa chir ami hairaga nungsi ba marup haina khangnei lan pham da mahak na ne chithi pura ga pai ri ngai da yekna ba gi nongmai na pan du na makhong ama tatli as adu phau ba ne atat pa makhong da gi i ta ta ta na ta na kilometer kun he na pai ra ga ne chir ami na lam thung pham yau rakhi lan loi ra ba matung da mahak pu France lengak na Greg's day guri mingthon ba thona phabegi medan piduna ne ikai khumna khrini
2: khangi
1: ima
2: dai ma ish nongmai na pan da na makhong ama su tat laba khunu aduna kilometer kun mu pai ni ni
1: ho ho ima
2: khunu do ma thona yam lai
1: lai pe ni
2: yai mana pi ba yai
0: adu ba ne tho ya
1: mama kai daw ra ge
0: bara hai na mingthon ba akhoi puina do me ku ma pan da am phan hai na khangna ba uri sha gi अकन बनोंगले नुसिक मायक न बंगम खिदे
1: ए
0: माइके इशालाय खंगदन हुमजेलप नोंगले नुसिक अखा अराउ द नेमा मराय बक्ति मकुन सि लोंगे
1: अस आई नो आइडिया
0: बरहा कौबा अखोय पुइना दि लैगि द्रे अदबो मागी थौना फबगि वारि दि निंथम दादा लमसांग लाप न चत्ता बु उसिक सिंगि पुवारि द मुनाय द न लै होदनि
1: मामा इरंग अदुगना जुलोन दि कमदौ खरगे
0: इंग्लिशिंग अनिगा सुपना तारा मापल दने मणिपुर थादो खिबा नुमित तुदगी पारगा नुमित सहुम हुम फुमा थोइगी मतुंगदा मय अनिमक इंग्लिशिंग अनि सुपना कुनगी अक्टोबर कुनतारु कुनतारे तने तमिंग लोंगी पाउक्सिंगदा अमु हन थुंगले नक दरनेसिया
2: अंगो नंग हाई सिबु अवे बरने बुवा
0: इसे आइन हाइजरी ब खुदिमकने छेति लाकी मतेंग ना कंप्यूटर द उगी मसा खतनिसि
1: ओ
2: मोय अनि मत रेडियो दम नंबो नरे इक्वा
0: रेडियो ग थादोक न द बदुना बु एकोइन मोय गे मस खंग बंगा मि निसे मसी कि मतुंग दे दे मोय अनि ग इ प दम फांगना गि दरेसे
2: हतु दि मोय अनि दो सिर मदरा ओ
1: अदुनि मामा
2: नुवाइ दे दा
3: मामा
2: मोय पा
3: ना हो जिक ति अखोइ पुना मस खंगे को
2: खंगे खंगे

0: ꯑꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯣꯡꯖꯝ ꯁꯨꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯅꯤꯠ ꯌꯨ ꯖꯤ 2026ꯀꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯍꯔ 552 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯍꯔ 14 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯍꯤꯔꯝꯅ ꯌꯣꯒ ꯐꯣꯔ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯦꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯀꯣꯜꯀꯥꯇꯥꯒꯤ ꯔꯦꯗ ꯔꯣꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯣꯒꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ
1: 21 ꯖꯨꯟ ꯀꯥ ꯌꯦ ꯗꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯊ꯭ꯋꯤ ꯀꯦ ꯀꯨꯆ ꯚꯨꯚꯥꯒ ꯄꯔ ꯁꯥꯜ ꯃꯦ ꯁꯕꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯕꯙꯤ ꯀꯥ ꯗꯤꯟ ꯍꯣꯇꯥ ꯍꯦ ꯑꯔ ꯑꯟꯇꯔꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯌ ꯌꯣꯒ ꯗꯤꯕꯁ ꯀꯦ ꯀꯥꯔꯟ 21 ꯖꯨꯟ ꯀꯥ ꯌꯦ ꯗꯤꯟ ꯕꯤꯁ꯭ꯋ ꯀꯦ ꯁꯕꯁꯦ ꯕꯦ ꯁꯥꯃꯨꯍꯤꯛ ꯎꯠꯁꯕ ꯀꯥ ꯗꯤꯟ ꯕꯤ ꯕꯟ ꯒꯌꯥ ꯍꯦ ꯕꯤꯁ꯭ꯋ ꯀꯦ ꯑꯂꯒ ꯑꯂꯒ ꯍꯤꯁ꯭ꯁꯣ ꯁꯦ ꯌꯣꯒ ꯀꯤ ꯑꯦꯛ ꯁꯦ ꯑꯦꯛ ꯑꯗꯚꯨꯠ ꯇꯁ꯭ꯋꯤꯔꯦ ꯑꯥ ꯔꯍꯤ
0: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜ ꯑꯖꯢ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗ ꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕ ꯇꯦꯂꯤꯀꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯃꯆꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯣꯒꯒꯤ ꯁꯥꯖꯦꯜꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯁꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯣꯒꯒꯤ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯤꯂꯥ ꯄꯇꯥꯟꯖꯂꯤ ꯌꯣꯒ ꯁꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯆꯤꯡꯉꯥꯃꯊꯛ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯋꯥꯚꯤꯃꯥꯟ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯄꯇꯥꯟꯖꯂꯤ ꯌꯣꯒ ꯁꯃꯤꯇꯤ ꯃꯍꯤꯂꯥ ꯄꯇꯥꯟꯖꯂꯤ ꯌꯣꯒ ꯁꯃꯤꯇꯤ ꯌꯨꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯇꯥꯟꯖꯂꯤ ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯄꯨꯖꯥ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯨꯗꯣꯟ ꯌꯣꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯁꯒꯣꯜ ꯕꯜꯇꯦꯔꯥ ꯑꯃꯨꯗꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯅꯥꯈ꯭ꯌꯥ ꯃꯆꯥ ꯌꯣꯒ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯣꯒ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯌꯣꯒ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯡꯕꯝ ꯂꯦꯈꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯌꯣꯒ ꯇꯧꯕꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯃꯥꯅꯟꯗꯅ ꯌꯣꯒ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯆꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝ 100ꯗ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯅꯤꯠ ꯌꯨ ꯖꯤ 2026ꯀꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ 552 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯍꯔ 14 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ 120,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 5:15 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯅꯤꯠ ꯌꯨ ꯖꯤ 2026ꯀꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯕ꯭ꯔꯖꯕꯤꯍꯥꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯪꯍꯩꯔꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 17ꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯂꯩꯍꯥꯎꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯤ ꯀꯦꯞꯁ꯭ꯌꯨꯜ 40.9ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯥꯒꯠꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯂꯤꯁꯤꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯄ꯭ꯇꯥꯍꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯦꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯕ ꯌꯥꯏ नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक की समुद्र खोंबान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कराईकलम रायलसीमा फिवम से मायोनर याय जम्मू काश्मीर अखा अराव लें नौसी सेल्ब याये झारखंड उड़ीसा फिवम से मायोनर याय पाव की मरक थत्ना अटेंब ब्रेक
2: इनुमेरेशन
3: फॉर्म ने
4: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की इनुमेरेशन फॉर्म फंग्रबदी।

0: मखल मथल की थरुम क्या संदोक तुने तहन जरीबा सी आकाशवाणी फालगी मेगा हर शाम अहुम दसमिक मंगा द संदोक चरीबा एफ एम संगाई चैनल दिगिनी हो जी मणिपुरी दा मोरे बपाओ ताबिर सी
1: आकाशवाणी फाल हौजु फाबगी मरोय बपाओ तरानी थुइ सुबह मालिम गी योगो निमित नसी पांगथोकली नुबिदा सिकी हिरम ना योगो फॉर हेल्दी एजिंग हाइबसिनी कोलकाता गी रेड रोड तपांगथोपा मालिम गी योगो निमित थरम द सरु यारदुना प्रधानमंत्री नहाय योगा हाइबसी फिजिकल एक्सरसाइज अमनी मस्त सही खाइदे अहल अंगां खाइदना पुमनमंगना योगा सानबियो मणिपुर दसु नुमित असी इम्फाल गी कुमल लंपाक इंडोर स्टेडियम द पांगथोके थरमसी द राज्यपाल अजय कुमार भल्ला मुख्यमंत्री युमनाम खेम चांद सिंह अमसुंग राज्य गी गृह मंत्री गोविंद दास कोंथौजम सरुप याके आकाशवाणी इम्फाल न सु स्टेशन असी कर्मचारी सिंगा लोइनना मालेम गी योगा नुमित थरम पांगथोके नीट यूजी लिसंगनी कुंटरुकी की परख्या नसी पांगथोक लगने परख्या सि लेबा गसी की सहर चंगवा यांखै माथुय अमसुंग मपा लेबा की सहर तरा मरी द पांगथोकनी मणिपुर दसु नीट यूजी लिसंगनी कुंटरु की परख्या पांगथोक नबा सेम साबा लुइरे मेट डिपार्टमेंट हाइरी मणिपुर याउन अवाउ नोंपु की राज्य अमसुंग लेबा गसी की तोंगा तोंगा मपम सिंगदा नसी दगी हौदुना लागी बलै पा पुप नमित पाउबा अकन बनोंग चुरबा याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग सानबा लेंगा गमसुंग मालेम की लुचिंग बसिंग अफब मरी थपना लेपाक असिबु मालेम की थाक अफब मिंचत क्या पोरोकनबगीदमक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बु थागतबा फोंदोख्रे त्रिपुरा की मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक शाहना हायरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम की मकादा राज्य जुगि लोमी लाकनी लिसिंग मरफू मंगा संगा हुमुद्रा माथुई की बैंक अकाउंट सिंग द पुन लुपा कोटि समापन हुमुद्रा तरेट लाख मरफू मंगा हाबख्रे अमसोंग फिफा वर्ल्ड कप की गरंग मिदांग पुंग तरह मखाई सानकी बा मैच ता नेदरलैंड्स ने स्वीडन बो पांजल मंगा अमद थोइख्रे हौकी बा एहिंग नुंगै मतुंग पुंग मा मखाई सानकी बा मैच ता ना जर्मनी ना आइवरी कोच पु पांजल अनि अमद थोइखे इक्वेडर मा सुंग क्रोशाओ पांजल चनब गम दन ड्रो चक्रे हौजिग यु पुंग मापल मखाई ताब मतम दा टुनिशिया ग जापान ग मसुंग मिदांग पुंग मापल मखाई ताब मतम दन स्पेन ग सऊदी अरबिया ग सानरगनी पाउलो जरे
0: तावी रिवर्सी आकाशवाणी फालगी एफएम संगाई चैनल दिगिनी।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो ताजरे, गुड मॉर्निंग मणिपुर। हवाई बम बो चौबा तराम नोक चरी करी क्रम बफंग बिसे तासी गेंग सिंग
1: वेस्टर्न ब्रिटेन की मतम कया लेली आंगांग वोइना हरिबाई छेगो अमता खंदेगेबा
0: इसे इसी की सैसकपा सैरिंग बगदि निसिंग बिरिब्रो
1: ये बोनी शर्मना छपने थेलिंग बदि सरांग बदि आ कनोदि खंजादेदा
0: गुरुमयम बोनी शर्मना छपनी यामचुमने तकपिरे सैरिंग बसे
1: सर तरी नाम के हयोगे को
0: तकपियो तकपियो
1: ओ कॉल तो रे बस जिंगे हम हटा मु तरो हाइने जे याम सयाम ने तुम एक्सप्रेस ते इथेकल पदी लडांग हाने लो खुत्ती रो कोट हंदे ना हंदे ना लोखल का अडुम थिंग ने दे अच्छी करी गिनो अपन दाव दाव पास लोखल ते बच्ची करी गिनो हंदे की तो बा
0: फोन तो विरकली बा मरुप सिंह ने सु इशान खंग ना ऐसे ममांग के चाहिए उधर फंग्रबा दी फंग्रब फंकीबा ले रखा दी अमुहन्ना तो विरक तरह में निंचिंग जबनी अदुगा फोन से दुमक तो रखा इसे जी खनिंग बना हैं मंदना दुम चाहिए उधर फादर ना तो विरक पर मरुप सु दुमक याओ है जरी बा सोम ना खनबी अगले इसे इसी की सही रेंग सोम द ताकपी बसई लक्षिण जरे सोम द खनबिरक दे बसई सिगी सैरेंग बा खांगेम बम गुलापी मदि सैरांग बना आरके जितेनी सै खदोल तोक जरी मयाम नुगाइन तामिनसी थागचै

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग मणिपुर दा तराम नोक चेरी कना ओइ बिरा बनो
1: अवांग लेकिन थबी जगी अहोंग संगम संगीता कर दे सर।
0: अवांग लेकिन थबी देगी अहोंग संगम संगीता है भी बनी को ngasai digi phone ot pi bro kya ra ko ot pi ra ge ngasi kisi bo
1: how would you what say me sa
0: objective phone phang bi re kari kram phang bi sei ta si ga
1: mani thoba kilangi pusta ne satta
0: पुष्परानीतों खोजल रोमी मई तेने से तोम थाजना सैरबा मैम पाम तानेगीसीबूमे गु नी करी मथे लुकोगे हों भी हवा नुाइज इसागी सेल थोक्नब थौदांग पांगबिरुरे युमगी तौदे याद मथे लुकोय होने भीरे फोन फंगदुना गुड मॉर्निंग मणिपुर दा इसै तानिंग बैसे मसु तागदोरे दुदि इसै खुदो तौजरप यारद्र
1: हाय
0: दि याम थवा याव बा ताबि मा खतन हपजा याग दा या या खै पुन तामि नबनि दो ngasai so ma
1: ये
0: सोम पनबीरली मरूप सिंह रेडियो ताबीरी सिंह पुनः तामीने से खुद तौजरी थैंक यू।

0: Anjarki va isi sigaloinana matang chida good morning manipur live phone in program lantok chaba lushinjiri phone to biraktuna thorum saruk ya birakpa madi thorum haubadigi loiba phauba tabikiba khwaipunamupu thagad phongdok jeri transmission asigi engineer oina thopu birba sing irom jemson meite md devchen ponsambam amadi duty room mes mendalevi ke staff konkam lakshmi chanu amadi adongi phone okchakiba winning sumam dev datana mayambu amukanna thagad phongdok jeri
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से वाह
2: फसा अनजान ऐप से बचें
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो मैडम
1: ताजरी थोरम द तराम नोकचरी
0: आई वांगोई थोग्राम लाई काय दगी थोमाउ जाम बबीता
1: बबीता हिंजांग आहाउ बचा बमालिको हिंजांग चाबी रगे
0: नसीदी संडे दिना
1: करी थोंगे है बा
0: उत्ती ओइ ना थोंगे
1: होय करम मखल गी उत्ती नो उत्ती मखल यामी
0: हवाई मंगन दो मरो ना कुपी जा तोड़ रहा थोंगे
1: कांग मया गी
0: आ
1: कुछ दी हापी द्रा बो
0: थरोई गांग हवा मंगा हुए
1: अस कोई दी चला के हेला का लाख पनी ना थरोई कांग हवा से ता बता साक्षी से कांग लाम नाम
0: मुझे आओ ये मेरा
1: अदू ना नहीं ना खले वाकल याम नुंगा आई ना फोन से तो बिरे है दना
0: अदो वाखन बढ़ी आम नुआए वो मशी जे वाल फाड़ गये नीना नुआए तब आम तंग थोंग दो गये मैं ना सुम
1: है बियो है बियो
0: कोई ये बाबा दो लाई तब था मरी मंगा है जल ए बको अदा जा बाबा की कुछ ना नुआए ना इन मशीन ना शोर की खुला अदा लाई सनु ना इना मेरा मोहिन मायांगे मफ़म द है जली
1: होय होय ngasi babita na phone to biraga father's day ga mari le na ko ngasi gi nume da sida songi babati inak ta leitre ha tak pi bane to bu leiru ba mapham ama de hekta nungai na ingna chikna leibo oyu haida na thambirak pa se aigi so ipa lai kidre chahi tara hum do shugre adu bu som na bibir iba mangol se aigi ipa gi su saru yau yai na khanjari do ga malem se leiba mapa kaina khra ba hai tare ni ko मकोई सिंगी सु सुमाइना वाखल से था ना खंडोक पा हाई बता रहे ने आवाज पा मधी लाई का दौरी बनी अदो बो कोई ना ठिंगु बंगम दा बनी ना साई लाई रुबा मापाम दा कोई की इपा और बस सिंगी थवाई ना नुंगाई ना लाई दुना अपा बा मापो अमा दा पोक पा हाई बसे मचाओ बस सिंगी कोई की अनिंग बा पाम बा हाई बतू ओए रे मसीना तब बा बिताई करी करम बा वाखलों था मिलेंगी
0: देखिए मैडम मैंने सुम हाइजन यूं बता नुसी हुई थी सिंगे आवा बाहर अगर दी कोई नुसी जिंग ना मजूम मकई ताला अगर ना मसा मशुया उधर बा जगी नुआई की दबा थक दो हाई तारे ने को मिला कना गुम्बा मना मसा लज्जते को ते हाइजन आवा बा नुआई तब मैं आ मम्मा ठेंग ना दी ना को मिला अदो आवा बा जिंग दो कितंग शायद उन्होंने बोली था मुझे मेरा अंगांग लेज़े तो बामी कोई जो याम चेंग ना अंगांग लेज़े खोते हाय बोली आवाज़ बतो याम पाउंडे की को मेरा नुमाइ तो बहाय तारे ने बो अदो हाउ अदो हाउ जिते इसान पानी पंगे याम कोई ना पंग जावे मतुंग दा अदो मायाम नदी सुमसा याव द बजे अदुनिया दाने ने यांग नंग की बो खुशी बजिंग द होगी की कुक्चरे न हाय न हाय न ने दाम वाई द हाय जरे
1: बबीता की दी आवाब कुक्चरे आवाब को क्रे दुगा बबीता गुंबी मायाम अम्म दिले रंग दोरी बनी को
0: अदु गुंब दो
1: फॉय मकोई दे दी करी हाय बिनिंगे बबीता की माय कई देगी
0: अदु गुंब दो सुम आइना होना होना बहाय बा मिशोर लेजी हाय बजे आ रही को मिदा अदो इशोर खुरुम बगा हाउजी कोई साइंस की मैं मतंजम चौकले मेडिकल मतंजम चौकला बनी ना होना बिरगा इसाई सुयाव दो बजिंग दो याव नन्ना बक शोर खुरुम बगा होना मिनची मिंहन नन्ना बक ओबीगन दो वाला ही ना ये राम वही रेडियो की कौन द हाइजरी
1: होय होय इशोर खुरुम बगा इशोर थासा अदेगी डॉक्टर ताना बा अदेगी फने आम ना ताना रगा सु उपाय ले जदा बा मी सु ले रंग गदौरी बने लेरी बने बा अदुना नसाईगी इचा इचा याम ना पंगनिंग बा को असम ना का नमर रोम दना मामा मापा ले जाता बा मचा ले दो ने ले दी बनी मैं फंग को दिंग दा दना ना साय है कि द प्रॉब्लम मैं थोक दी कई दोस्ती के है द सॉल्यूशन दा कई दोस्ती के ना ताना बा मतम दा ना साय के अनी दो उपाय ले तब बा अनी दो पुंगवा साबिर लग दी को मामा मापा ले जाता बा दुना मामा मापा तो पंग जरा बा इचा ले जाता बा दुना मामा मापा ले तब बा दुगी मचा दो युग पी रबा इचा उई पी रबा अदुसु अतोपा लंबी अमने हाइदना हाइजबनी कोसम आइगी सिना चुम्मी और आइगी सिदा मयाम गे अपाम ब ओइबियु हाइजबदिना चदे आइगी सुसुम मोरा म फोंगदोक चबनी babita mo hai ningai le tana thaga chari aduga somna pibiri ba afaba mangol du su tamda masigi nupi oi bising da phangduna macha yau da ba kya am le ramaga su thaja baga loina na handa ki chahi sida loina mak phangbo oi ra sanu hai ba wa pham sima su tham jagi
0: ho ho me dan thaga chari
1: thaga chari
0: nungai nungai na lai biu khu chi thana lai bi ko me da
1: ho ho nungai na lai minasi
0: ah

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: ताबी ब्रो,
1: हेलो
0: आई दी ताजे ये
1: आई चार जवान आई
0: ताई
1: यम तो
0: ताई
1: नताबा
0: कना आई बीरा बनो
1: हेलो मैडम आई तो खुना मुखों दे ने बा तो वा तो खुन यांग उ ने
0: अंगो बी अंगो बी
1: आई
0: अनी छु
1: मैडम
0: ने सी
1: सी
0: दी
1: जी फादर फादर दे ने इन स्लोन दे हाइने रे को
0: होय
1: इंग्राजी दे हाइने रे फादर दो दाना जो खय खय बाबा गि ने थाबने बा आजो ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯏ ꯕꯕꯥꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯛꯑꯝꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯌꯥ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯀꯦꯀꯨ ꯄꯥꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯡꯐꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯜ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯌꯥ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯉꯩꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯕꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯊꯥꯛꯏꯉꯩꯗ ꯈꯣꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤꯅ ꯔꯟ ꯇꯥꯟꯖꯜꯂꯨ ꯅ ꯔꯟ ꯇꯥꯟꯖꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯟ ꯇꯥꯟꯖꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯕꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯈꯪꯉꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯟ ꯇꯥꯟꯖꯜꯂꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯛꯏꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯅꯣꯡ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤꯗ ꯌꯥꯎꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯄꯥꯡ ꯐꯪꯖꯅꯤ ꯋꯥꯡꯅꯤ ꯋꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯩ ꯈꯝꯖꯨ ꯈꯣꯕꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯐꯪꯉꯨꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯒ ꯍꯪꯖꯒꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ

शुक्रिया मेरे दोस्त सुजाता। नमस्कार, 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं संगाई चैनल के जरिए हमारा मनोरंजक कार्यक्रम गीतमाला, और मैं हूं आप सबकी दोस्त वैलेंटीना गीतमाला के साथ आज के आपके दिन को महकाने।

दोस्तों आज है बहुत बहुत शुभ शुभ दिन, क्योंकि आज हो रहा है हर हर कण कण में मना रहा है 12वीं इंटरनेशनल योगा दिवस। और योगा यानी जीवन में मिठास, और गीतमाला का यही सोच, यही एहसास गीतमाला लिए आपके लिए कुछ गीत का भेंट करना चाहता है अपने ही कार्यक्रम संगीत धमाका के जरिए। और ये मिठास भरी गीत है रवि दुबे और सरगुन मेहता की आवाज़ों में। ड्रीमियाता एल्बम है और संगीत के निर्देशक सागर और जो हैं गीत के लेखक भी, और इसमें जो संगीत के निर्देशक एविश्रा और रचनाकार डैनी इस एल्बम में नज़र आए थे, जो भूमिका निभा रहे हैं रवि दुबे और सरगुन मेहता का ये कमाल सुनिएगा इस गीत के ज़रिए।

और आपके दिन को महकाने के लिए संगीत धमाका में ये है रितु रिपा की कमाल भरी जादूगरी आवाज में आपके दिन को ही महकाने और बिना किसी शक के इश्क फरमाने के लिए। रितु रिबा की आवाज में ये गीत है और इस गीत में नजर आए थे जो मुख्य भूमिकाओं में हैं ईशान खत्तर और तारा सुतारिया।

और दोस्तों इस गीत पे जो आवाज था, जिसकी जो आवाज है, सुनने के बाद हम अपने दिल को थाम नहीं सकते थे, वो है श्रेया घोषाल। और उन्हीं की जादूगरी आवाज में ये अगला गीत है रे मन। श्रेया घोषाल और स्वानन किरकिरे के साथ कनिष्क सेठ की आवाजों में, स्वानन किरकिरे के बोल और संगीत में ये गीत है।

और बेफिक्र होके सुनिएगा संगीत धमाका का ये अगला गीत, जो है संजू राठौर की आवाज़, उन्हीं के निर्देशन और उन्हीं की गीत के लेखन और संगीत निर्देशन में। बहुत ही शेकी वाला गीत है और एल्बम का नाम भी शेकी है, जो आपको शेकी शेकी कर देगा ज़रूर।

0: उठा माजा किंग, ओ माजे किंग।
1: मी
0: घरी नाही जायचं का?
2: कमाल भरे गीत को सुनने के बाद क्या ख्याल है आपका? ख्याल ये है कि एक कमाल भरे एक नए गजल को आपके लिए सुनाया जाए पापोन की आवाज में। और ये वो गजल है जो एक गजल को एक नए

तरीके से एक नए सुंदरता के साथ पेश किया जा रहा है और ये कोशिश है पापोन और इशाद कामिल द्वारा, गीत और संगीत।

और यार खफा मत होइए क्योंकि आ रहा है पसूरी, और पसूरी की ये गायक हैं अली सेठी के साथ शय गिल, गीत के लेखक अली सेठी और जुल्फी, संगीतकार अब्दुल्ला सिद्दीकी और शैरी कटक।

और दोस्तों, दुनिया के दस्तूर में ये भी तो है, खुशी से जिएगा, जी भर के जिएगा, ये आप ही की जिंदगी है, आप ही की बदौलत। नमस्कार।

0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल अमसुंग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नचिंग बछरुक प्याखी थौरम वांगांगबदा राष्ट्रपति हाय योगा हायबसी लैबाक असिगी महौसादगी लैरकलाबा मरुवाइबा चटना लोनचटपु पालन तौबनी मांग हाय योगना मियोयपु मसा महु फना लैहंदुना हिंगबगी महौ थोकली मांग हाय योगा हायबसी भारतकी मुनि ऋषिसिंना सही लिसिंग लिसिंग होनजरकपगी महैनी मांग हाय
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ सक्रिय आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: राज्य की आर्ट एंड कल्चर विभाग ने सिंधुना वर्ल्ड म्यूजिक डे बैगेचंद्र ओपन एयर थिएटर की फाउंडेशन डे चीफ मिनिस्टर की आर्टिस्ट सिंगी टेंबांग की मखाद मना फंगलब मियोसिंग ओपगी थौरम हौजिक इम्फाल की पैलेस कंपाउंड बैगेचंद्र ओपन एयर थिएटर पांगथोकनी थौरम आर्ट कल्चर मंत्री के एस लोकेन सिंहसु सरुक यागनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईरी जहाज साबगी लमदा भारत अनौब खोंथांग थांजिन गमले कोलकाता भारत नेवी की प्लेटफॉर्म सिंह INS दुनागिरी INS संधोधक INS आग्रे कमीशन तौरदुन श्री मोदी ने हाई हौखिब सही खरा केंद्र सरकार ने तोान तोान थौसिल कया सेमदोक सेमजिन तौरे। श्री मोदी ने हाई लान की जहाज अहम कमीशन तौखिब तुंगी याफनबगीदमकनी मांगने हाई हौखिब सही खरा सरकार ने मेरी टाइम सेक्टर बु लैबाक असी चाकोलहनबगी इंजिन अमनी हाइने लौबग लोइनना मसिना मियोय ला कयादा थबक फंगनबा गमले लैबाक असिना ngaksel गी पोलम सिंग पुथोकपद नतना अतै पोलम सिंग मपाल लमदा थादोकपगी चांग सुनिथिना हेंगत हनबा गमले मांगना हाय लिसिंगनी तारा मरी फाउबदा भारत ना लुपा कोटि सात्रेट लोमगी ngaksel गी पोलम सिंग मपाल लमदा थादोकपा गमकी अदुबो हौजिकति लुपा कोटि निफु हेना हेनगत हनबा गमले। केंद्र की रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाईरी राजस्थान की गमखई परिंग रियल नेटवर्क सेमगतनबा प्रोजेक्ट पैखली मांग ने हाई मसी गमखई परिंग मियामद रियल गाड़ी की खुदोंचाबा फंगनबत नतना लैबा की सुरक्षा की लमदसु यामना मरुवाइबा बीकानेर रेलवे स्टेशन दगी लालगढ़ साबरमती रेल गाड़ी लमथारदुना मंत्री ने हाई लैबाक सिंब थुंबदा रेलवे चु मतंग चुना सेमगतनबा अकनब थबक पाइखली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने लौबा नीट UG परीक्षा हौजिक पांगथोकली लैबाक असिगी सोहर चमा यांखै माथोय मसुंग मपा लैबाक की सोहर तारा मरी दा ngasi mahiroi lak kunithoi lising humudrama pal henbana parikya thari pau loijare।

चलिए मैं थोड़ा परिंग सिगी नसिन मिदान पुंग निपाल मखाई सनुक सगनी नसिन माई सिंग दुबी दोइबना गुड इवनिंग मणिपुर थोड़ा मसे द लाइव फोन इन मणिपुरी फिल्म से मैं हम थोड़ा मसे द स्टूडियो की टेलीफोन नंबर 8798-03293 द फोन तो विरक्तुना सन क्वेदा विब मणिपुरी फिल्म से सिंग खन विरक्तुना ताबी बियागनी नुबिदान पुंग मापल गमिरित मंगा ताबा मतम द थमजरी लमकोई वारी की परिंग द निंगसिंग बगी मिहु थोंग द थोरम मसिद सोनी ग उनुदुन वारी सा बगी आहन बतांकक उनबी ग दबमदी थोरम मसिव पुथोप दिलीप मयिंबम

0: पाओगे सकतम ताबीरे थोड़म ताबीरी बस अकस्बान इंपाल की संगाई चैनल लगी नहीं खबर का मुक्ता भी रसी केंद्र द एनडीए सरकार ना शासन पायरक पर चही तरह निपल चही तरह निथोई सुरक्ष पर गमरी लेने ना अकस्बान इंपाल की ई पाओ कांगबू ना तांकक नहीं रस संदूक लिबा कने ने नबु की थोड़म की सरु का मोइना हुजिक ताबीर रसी लाखपति दीदी हाई बा हिरम द मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन इंस्टीट्यूशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की स्टेट मिशन मैनेजर गुरुमयूम कविता देवी का अकस्बान इंफाल की ई पाओ कंगबू की डेस्क एडिटर खेत्रीमयूम प्रेमसान का उन दोनों वरी बताई साबा
1: भारत सरकार ने लेबा सुगी मियांग में दमक तुवान तुवान बा सखत थौरांगी स्कीम के या पकेतुना मियांबु सखत पा मुजे नुवाई बा पुसी मरेल महंगन बगे दमक ता हुन दुन लाखले मसगी मनुंग सना खुंगंगी नुपी सिंगबु सेंथोक लंबी लेहंदुना लुपा लाख लाख तान बंगंबी नुपी सिंग ओहेन बगे दमक ता रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय की मिजेंग मखादा लाखपति दीदी हरी बथोरांगसी हौदोखी लाखपति दीदी हरी बथोरांगसी मतांग मियाम अकुप वरोल खंगहनबगिदमक आकाशवाणी इंफाल की स्टूडियो रिलेशन बिरी बसी मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन एमएसआर

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

12 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का है। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

10:32 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका प्रोग्राम हर सिंगार में। आपके साथ मैं विकास।

जी बिल्कुल मान जाइए कि एफएम गोल्ड जो है आपके लिए बेहद प्यारे प्यारे से गीत लेकर आता है और उन्हीं गीतों से कई दफा हमारा सफर, कई दफा हमारा वक्त बेहद आराम से कट जाता है। ये जो गीत आप तक पहुंचा ये था 1970 की फिल्म हिम्मत से और आशा जी की आवाज और उसके साथ रफी साहब का भी साथ। इस गाने को एक जो जरूरत होती है किसी गाने का खिलकर निखर जाना और पर्दे पर भी उतना ही खूबसूरत सामने पेश हो जाना, शायद इन दोनों कलाकारों ने उस गीत को उभरने में बहुत अच्छा काम किया। हालांकि हम ये बात कहने वाले कौन होते हैं, लेकिन एज अ लिसनर जब ये गीत अभी स्टूडियो में भी चल रहा था तो मुझे लगा कि वाह, मतलब पूरा का पूरा स्टूडियो एक तरह से झूम उठा था। बहरहाल ये जो फिल्म थी ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब की जोड़ी के तौर पर बेहद खूबसूरत और चर्चित फिल्मों में गिनी जा सकती है, जिसका संगीत भी काफी अच्छा चला था और ये फिल्म जो थी तेलुगु फिल्म की एक तरह की रीमेक थी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए आप और प्रोग्राम चल रहा है हर श्रृंगार, आपके साथ मैं विकास।

फिल्म का नाम था बगावत और पर्दे पर धर्मेंद्र और रीना रॉय नजर आती हैं और फिल्म का ये बेहद खूबसूरत सा और दिलचस्प सा सीन है और एक गेटअप में तैयार होकर धर्मेंद्र सामने आते हैं और उसके बाद ये गीत पिक्चराइज किया जाता है. कहानी को आगे बढ़ाने वाला गीत इस गीत को कहा जा सकता है और अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की बेहद प्यारी सी जोड़ी और साथ में एक बार फिर आनंद बख्शी साहब इस गीत में उनका साथ निभाते हुए. अगला गीत आप तक पहुंचता है दिल का हीरा. एक फिल्म आई थी 1979 में. ये गीत बीते दिनों मैंने कह सकते हैं कि सुना और अचानक से मेरे सामने आया और मैंने पहले कभी इस गीत को सुना नहीं था. लेकिन जब इस गीत को सुनते सुनते एकदम से ख्याल आया कि इसमें दो नाम तो चलिए रफ़ी साहब और आशा जी का सामने आता है और एक नाम दिलचस्प सा मुझे लगा और मुझे ये भी ख्याल आया कि आखिर इस नाम को क्यों चुना गया होगा. आप फिलहाल गीत सुनिए. गीत से पहले आप तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब की जोड़ी इस गीत में भी सुनाई देती है. गीत सुनिए उसके बाद तीसरे जो गायक हैं उनके बारे में बात होती है. आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर श्रृंगार.

फिल्म का नाम था दिल का हीरा, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि अमित कुमार की इसमें आवाज थी तीसरे गायक के तौर पर, और बाकी के दो गायक जो रहे वो रफी साहब और आशा भोसले रहे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था। जब गीत सुन रहा था तो अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि आखिरकार तीसरे गायक के तौर पर किशोरदा को भी लिया जा सकता था, लेकिन हो सकता है कि किशोरदा या तो बिजी रहे हों, क्योंकि अमूमन बहुत बार ऐसा होता है कि तीसरे गायक के तौर पर डेट्स ना मिल पाना भी एक वजह हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी रही हो कि पर्दे पर कोई जो एक्टर हो, जो कि इस मामले में सचिन थे, उनके ऊपर अमित कुमार साहब की आवाज ज्यादा फिट बैठ रही हो, क्योंकि एक यंग सा चेहरा पर्दे पर नजर आता है बेल बॉटम पहने हुए और नाराज सा होता है, जिसको कि हेमा मालिनी मना रही होती हैं एक टॉय ट्रेन में बैठकर। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए आप, और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। वैसे अभी मैं सोच रहा था कि हेमा मालिनी और सचिन किन किन फिल्मों में साथ नजर आए, या कह सकते हैं कि इन दोनों की किन किन फिल्मों में कास्टिंग के तौर पर नाम देखा जा सकता है, जिसमें दिल का हीरा जिसका गीत अभी आपने सुना, सत्य पे सत्ता, शोले और क्रोधी मेरे जहन में आई, और अगर आप इसके अलावा भी कोई और फिल्म याद कर पा रहे हो तो जरूर मुझे बताइएगा किसी ना किसी दिन अपने संदेशों के जरिए। फिलहाल प्रोग्राम का अगला गीत पहुंचता है आप तक, और लाट साहब इस फिल्म का नाम है, 1967 की ये फिल्म है, और इसी का ये नगमा पहुंचता है आप तक।

0: tiens.
1: शंकर जयकिशन साहब की इस कंपोजिशन के साथ आपको छोड़े जाता हूं और थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन आप जुड़े रहिएगा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद
1: In the last 12 years of the NDA government, Prime Minister Narendra Modi has always emphasized that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
2: Thank you.
1: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को बिजनेस एनवायरनमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स अगर आप टॉप टू हमें बताएं इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं
2: जी बिल्कुल सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है तो सरकार का जो पहल था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ मेक इन इंडिया से क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया बहुत बल दिया जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे तो जिसमें हम 143 थे बहुत नीचे थे मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसके बाद जो स्टेट्स ने उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन हुआ जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया जो लोगों में बिजनेसेस में सरकार में उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हों उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू हो गई जो उसके पिलर्स हैं खास करके जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस ये चार जो पिलर्स हैं इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे उसके बाद अभी 220,000 हैं अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10% सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई जैसे कि हमारा जो इन्वेस्टर है जो ग्लोबल इन्वेस्टर है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जो एफडीआई आना शुरू हुआ जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था तो लगभग हम मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम 100 बिलियन डॉलर का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ आवर इज ऑफ डूइंग बिजनेस व्हिच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग आवर एफडीआई एंड आवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी
1: एब्सोल्युटली सो मिस्टर चनॉय डॉक्टर शर्मा हैज सो यू नो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन दैट हाउ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम द मंत्रा फॉर द पुश दैट हैज कम टू द manufacturing sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change or you can say paradigm shift in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
3: If you look at the whole ecosystem, right? Earlier, business was always viewed as suspicion.
1: Yes.
3: You were always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
1: Mm-hmm.
3: A very significant change has happened in this last 12 years that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things. Like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this. The third thing which is there is that they've allowed self-certification.
1: Yes.
3: Right? For the common man, what does self-certification mean? It means if you're doing something, if you're applying anywhere, you can take a copy of your Aadhaar card and self-attest it. Mm-hmm. This was not possible in earlier regimes. You could take a lot of documents and self-certify them. If you were to file certain returns, initially you had to get it verified or something by someone. Now you can actually do it on yourself. The third thing is, I remember very clearly for manufacturing and taking S.P. Sharma's point earlier, there were 1,947 compliances required and things to be filled by a particular company in the manufacturing sector over a period of year. Over the reforms, this is actually reduced. The same compliance was for a large company and for a medium and small company. So that is what has happened here. But I think you must see the reforms and the thing from the view of a street vendor to a large businessman.
1: Yes.
3: A medium scale person and a street vendor, because of the digitization and the bank accounts thing, has now got access to credit. This was not available earlier. So respect, trust, accessibility, and the opportunity to start a fresh business, as he mentioned, the startups.
1: Yes.
3: And as you talk about new businesses, MSMEs, to grow, they've allowed that by a simple change.

0: changed in the definition of the MSME thing. So now MSME has got lost the fear of growing going forward.
1: Okay, so that flexibility is there, and that intent to make amendments whenever it is required, that we have been observing over the last 12 years?
0: Absolutely, and if you see, this is still work in progress. You see, we've revised 3 legal laws in the criminal space, mm-hmm. The Evidence Act, the Indian Penal Code, mm-hmm. and the Code of Criminal Procedure have all been, and we have the BNSS and BSA, and over 12,000 laws have been scrapped, 14,000,
1: yes.
0: right? They've been
1: yes.
0: scrapped, right? These are all things which are not there. You have looked at decriminalization, which I talked about earlier. So the fear of that going out. And the most important, and you started this conversation by saying, what are the 2 most important things that you've said? The first 2 most important things actually happened in 2014 and 2016, right? 2016 and 2017, right? The first one was the IBC. The insolvency code, because
1: yes.
0: earlier companies could not, and the BIFR and the alternatives, they were graveyards of industry, not renegotiating kind of things. The second
1: yes.
0: one, which is very important from a national perspective, which got implemented from the 1st of July 2017, was the GST,
1: yes.
0: which removed multiple taxation and got it into one tax, made it very simple, and that reform is continuing. So it's been a progress. This year, for example, earlier this year, they introduced reduced GST rates on many sectors.
1: Yes.
0: And you're seeing, despite Trump tariffs, despite the war.
1: And it became a 2-slab structure,
0: yeah,
1: much simpler.
0: No, nearing 2 slabs, not
1: yeah.
0: yet 2 slabs.
1: Yeah,
0: SP Sharma will differ from that.
1: Yeah.
0: But if you look at this, there have been growth rates.
1: Mm.
0: People thought because of the Trump tariff and because of the war, Indian growth economy will be declining. But you saw the GDP numbers come out for
1: yes.
0: last year and the
1: yes.
0: projections for this year. And you will see the current PMI index, it is showing growth going forward.
1: Yes.
0: So this is all a result of the reforms and the income tax assessment. All these are all positive steps there. Yes, something, always people will say something more has to be done, but that's a work in progress.
1: So Dr. Sharma, we talked about how business entry has become much easier, how the permits, getting permits has become much easier. If you can throw a little bit more light on that, the National Single Window System, which has been launched, and the land records, how they have been digitized. You feel that all these digitization of the various aspects of business, they have brought in much more transparency and led to environment which is more harmonious, and there is less chances of disputes happening or corruption happening?
2: Yes, Sonuji, digital processes are very, very important for the ease of doing business, as now we are the largest digital economy actually. We are at the top in the world economic system, and our digital transactions are now more than 20 billion in a month. So the total number in a year becomes in more than 200 billion. So DigiLocker, I think, is a great breakthrough for these opting business processes. As I earlier mentioned, that procedures are coming down,
1: yes.
2: compliances are coming down. As Mr. Shunai mentioned, that compliances, government has removed many compliances from the system and have simplified more than 42,000 compliances during the last 4-5 years.
1: Mm.
2: So all these developments, like the removal of compliances and simplification of the compliances, is supporting the ease of doing business, particularly the new and young entrepreneurs to come into the system.
1: Yes.
2: Now, when I go to some classes or the MBA classes for some guest lectures, then the students talk about the entrepreneurship.
1: Mm.
2: They want to know about the opportunities existing in the promising areas of the economy.
1: Yes.
2: Now the entrepreneurship is in their mind. They want to move forward to become entrepreneur, to provide the jobs to the other people. So this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years, with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like, the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space, to move forward. That is a great example of ease of doing business.
1: Yes.
2: Like, the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses, and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India. Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
2: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business, so this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
2: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
2: With a great confidence.
1: Yes.
2: That yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
2: We are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies, like our services PMI, our manufacturing PMI. Even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
2: System.
1: Absolutely. So, Mr. Chanoy, jaisa ki abhi Dr. Sharma ne kaha ki hum, aur aapne bhi kaha ki itne hum aapadaon se guzre, itni mushkil situations jo international level par hui, chahe wo pandemic ho, chahe ye geopolitical conflicts ho, but phir bhi humare aarthik मजबूती बनी रही है मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं जिन्होंने सबको जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की उसे पूरा करने का एक मौका दिया
0: सूरज जी अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है ठीक है तो पहला जो चीज बदला जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे और आपने पूछा ऑनलाइन का आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए अब वो एक बहुत कम सा हो गया है
1: जी.
0: अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया और इनमें मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए ठीक है अलग अलग स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा
1: जी, जी जी
0: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है उनकी क्या जरूरत है उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया पीएम विश्वकर्मा स्कीम जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे तो लोग कहते थे इंजीनियर डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट
1: जी
0: ठीक है एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था
1: जी
0: और अगर किसी को कहते हैं कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं बेटा बेटी आप मत जाओ इसमें आप एक नौकरी करो
1: हाँ
0: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में गांव-गांव में और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ये एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। अब कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो है इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के।
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओ और सिटीजन ने जो कोलैबोरेट किया था। देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे। पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स थे, अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हरेक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी। और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कम्पिटेटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे, तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूँ जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्होंने क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करे कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई हैं लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं एमएसएमईज के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है, और ओएनडीसी प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा. तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ जीडीपी होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ जीडीपी, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में. और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि पीएलआई स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है. नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी. हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हरेक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दोनों है. और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज. इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो. तो एक बहुत बड़ी चीज है, जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी. तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा. अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे आरबीआई का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड. ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं. हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है. जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन. तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो एक इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है. तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है. और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
1: जी,
2: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी. अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है, खास करके जो एमएसएमई है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा. नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम.
1: ओके, अनदर पॉइंट मिस्टर चिनॉय विच आई वुड लाइक योर यू नो व्यू ऑन दैट लॉजिस्टिक्स, यू नो पीएम गति शक्ति, वेयर दे हैव टेकन अ मल्टी मॉडल अप्रोच टू फिजिकल कनेक्टिविटी, देन देयर इज लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0, यू नो द वे द टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड वेयर यू कैन जस्ट ट्रैक रियल टाइम कार्गो, और देयर आर सो मेनी रिफॉर्म्स फॉर फास्टर कस्टम क्लियरेंसेज एंड स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट सपोर्ट out. How important are these for creating confidence in India as an investment destination, both for domestic and for the foreign investors?
0: So, Sunilji, you've talked of three different things and I'll answer each one separately. So first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that, you know, to be export, and Mr. Sharma talked about how exports have grown. A lot of our exports were import dependent. I mean, you take gems and jewelry. You know, we import and then polish and then we send out, just for example, which is a large scale employment opportunity. Now, the challenges there were threefold. The first one was it took inordinate time to clear your goods from customs.
1: Yes.
0: And the processes were cumbersome. The second thing was it took a lot of time to get from your factory to the shipping location because of logistics.
1: Yes.
0: And the third was that when you exported, you didn't have access to credit and there was no guarantee for the export. Mm. Now, all these three issues have been actually addressed by the government in the ease of doing business.
1: Mm.
0: And particularly the first is you have computerized the customs forms. Second, you've increased the turnaround, decreased the turnaround time, which was like 14 days, 21 days to less than 7 days of cargo vehicles in some ports. Again, number of ports has been increasing. And the third, you've digitized most of the processes where you don't have to be physically present and you can do this online. And interestingly, and this is very interesting for your listeners to actually understand, if you don't clear your goods or you don't pay on time, there's a penalty on you. So you're actually putting the onus on the businessman to help in this going forward. So, you know, that is the customs thing. And there's been a lot of streamlining of the customs thing and more is in store going forward. There were multiple chapter heads. There were multiple things here. There's a rationalizing going in. And a lot of what has been done in income tax space will be done in the customs space. The second thing was logistics. You know, if you took the textile industry for one, and it's a 4 or 5 season kind of a thing, and you had to ship between India and let's say your main market, if it was the US, within certain number of days. Now, if more than 50% of those days were taken up in logistics, then you faced a disadvantage. And with the PM Gati Shakti and everything happening here, they looked at a very simple thing. Where are the manufacturing clusters? Where are the export destinations? And where is the logistic required? And started addressing them in a very systematic way.
1: Yes.
0: And then they put it online. They made it digital so you could actually follow. Private sector also has played a way. You know, we tend to think that maybe companies who do delivery, right, are possibly using gig workers, etc. But they've contributed to this because they can track shipments. Private guys, you know, even now the India Post, if it sends you anything, you can track it going forward and you know when it's going. So the whole, and like Mr. Sharma mentioned, that 14%, it has come down to single digits now and you'll see further going forward. So that is the PM Gati Shakti, you know, impact here. And the digitization impact is much, much, much, much larger because, you know, you can do everything digitally going forward.
1: Yes.
0: But there's a very interesting statistic that I like to say. Over the last few years, there was always a kind of a complaint, right? That private sector was not investing. You know, it is all led by government. And you know, if you look at the last few months, and given the fact that we had tariffs against us, uncertainty of tariffs still looms. There is the war situation, twin war situation. Both the wars impact us hugely. For the first time, you're seeing green shoots of private sector investment coming in because private sector capacity utilization is around 74-75% and a lot of new projects are coming up. And the other interesting part is, given the digitization, you know, whether it is GST, Udyam registration, the GEM, the ONDC, or the PM Swanidhi, or let's not forget the ENAM network.
1: Yes.
0: It has got millions of entrepreneurs that were previously invisible to the system, got them online, got them formalized, and got them access to credit and visibility to the external market.
1: And also, there's been a lot of stress on inclusivity. If we see the Mudra scheme, you know, the women are, I being a lady, you know, I feel that, I mean, there's a lot of stress that has been given on developing women as business entrepreneurs. And a lot of encouragement has been given to new entrepreneurs. So you feel that this is a era where anybody who has the talent has now the opportunity, has been enabled to become a part of nation building?
0: I think absolutely. If there are any listeners who want to start a business, women or men, there are a lot of specific projects. And, you know, if you look at the year before last budget, right, one of the things was 75% women in economic activity. You know, that's his goal of what does Viksit Bharat mean? Right?
1: Yes.
0: And we want to become entrepreneurial. So this is the best time for any young person or even a person who
1: of
0: is
1: any age,
0: age group,
1: yes,
0: to actually explore setting up a business. The domestic ecosystem to promote entrepreneurship has never been better. Some people may say some

0: More changes are going to happen required, but this is always work in progress. And the interesting part of this whole system is that the government is willing to listen to what changes need to be made. If you give a suggestion, it is looked at, it may be accepted, but the whole idea here is ease of doing business and ease of living.
1: Absolutely. In fact, we are totally running out of time. Would you like to say something, Dr. Sharma?
2: Yes, Sonuji, I would like to mention one more promising area, which is the artificial intelligence, which is promoting and supporting the business's trajectory and making them more and more easier. अगर आप देखें तो जो हम पहले बहुत बैकवर्ड माने जाते थे कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में अभी हम सबसे आगे हैं
1: yes.
2: हमारी जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन में दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम
1: तो ये एक ब्रेक थ्रू मेजरली टू
2: यस जो सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 crore के फंड से शुरू किया तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कम्पेटिटिव इन दी नॉट ओनली इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट दी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम
1: डॉक्टर शर्मा मिस्टर चनॉय थैंक यू सो मच फॉर कमिंग
2: थैंक यू
3: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसवी शर्मा परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं
4: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात

जी बिल्कुल, दिन ढल चुका है और घड़ी बता रही है कि विकास अब तुम्हारे जाने का यहाँ से वक्त आ चुका है क्योंकि मंजू ने स्टूडियो संभाल लिया है। तो विकास को दीजिए आज के लिए इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्र पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु

0: खिन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। दामुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रनों से हराया। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है, जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. These include an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agre. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the Prime Minister said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted yesterday amid tight security arrangements. The National Testing Agency, NTA, said more than 20 lakh candidates appeared for the re-examination at 5,440 centres in the country and 14 centres abroad. The examination was conducted in 13 languages, including Hindi and English. The NTA said that extensive arrangements were made for all candidates, including more than 10,000 persons with disabilities. In Tamil Nadu, 7 people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam yesterday. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The NDRF, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a 3-member committee to submit report within 24 hours. The Chief Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of each deceased. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the ammonia gas leak incident at a seafood export unit in Tiruvallur, Tamil Nadu. In social media posts, Mr. Radhakrishnan and Mr. Modi

0: extended their condolences to the bereaved families and prayed for the speedy recovery of those undergoing treatment. The International Day of Yoga was observed throughout the globe yesterday. Prime Minister Narendra Modi expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. In a social media post, the Prime Minister said, "It is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health." Indian women hockey team lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating host New Zealand 2-0 in the final in Auckland yesterday. With this, the Indian team also secured entry to the FIH Women's Pro League. The India Meteorological Department has forecast extremely heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal till Saturday. While heavy rainfall is expected in the rest of northeast, Bihar, Odisha, southern states and Konkan and Goa for the next 4 to 5 days. Thunder squall conditions will prevail over Rajasthan, Bihar, Jharkhand and Odisha till today. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111
3: नमस्कार पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं साथियों जैसा कि हम जानते हैं यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे साथ साझा की है बहुत ही रोचक जानकारी और ऐसी जानकारी जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बोला जा रहा है कहा जा रहा है और हमारे युवा साथी बहुत रुचि लेकर इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पर गए तब उन्हें चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई कुछ ताम्र पट्टिकाएं उपहार स्वरूप दी गई वो उपहार जो भारत की एक अमानत थी ये ताम्र पट्टिकाएं भारत पहुंची हैं और हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे साथी इस पर बात कर रहे हैं इस बारे में जानना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी है हमें कि हम ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानें इनका क्या रेलिवेंस है इनकी क्या समसामयिकता है ये हम समझे और साथ ही जिस साम्राज्य से ये जुड़ी है चोल साम्राज्य हम उस साम्राज्य को भी आज थोड़ा समझें तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है इन ताम्र पट्टिकाओं का
4: मेरे प्यारे देशवासियों बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं लोग खुशी जता रहे हैं गर्व व्यक्त कर रहे हैं दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है साथियों इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है साथियों हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है

0: इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: तो सुना आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कितनी रोचक तरीके से ये बताया है कि ये ताम्र पट्टिकाएं हमारे सामने इतिहास की एक खिड़की खोलती हैं, जिससे झांक कर हम अपना भविष्य देख सकते हैं। और इन ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानने के लिए, चोल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने दो विशेषज्ञों को। आपसे उनका परिचय करवा रही हूँ। हमारे साथ हैं देवेश विजय जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, शोध कार्य से आप जुड़े हुए हैं, इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। देवेश जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
1: हमारे साथ हैं मनीषा अग्निहोत्री जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर हैं। मनीषा जी, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद नीलम जी।
1: जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया कि हम चोल साम्राज्य के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही ये जो ताम्र पट्टिकाएं भारत आई हैं, अपने घर लौट कर आई हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मनीषा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या महत्व है इन ताम्र पट्टिकाओं का?
3: ये ताम्र पट्टिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में देखें, जब ये चोल साम्राज्य जिस समय अपने उरूज पर था, तो उस समय इस तरीके की संस्कृति जो है यहाँ पर प्रचलित थी। हमारे ज्यादातर जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स हैं, वो हम लोगों को कॉपर प्लेट्स पर मिलते हैं
1: जी।
3: और ये जो कॉपर प्लेट्स दिए जाते थे, इशू किए जाते थे, वो भूमि अनुदान से संबंधित होते थे, या जो है राजस्व से संबंधित होते थे, या कोई रॉयल डिक्री से संबंधित होते थे। तो ये जो चोलों की जो ताम्र पट्टिकाएं हमारे पास लाइडन से यहाँ पर पहुंची हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये हमारे इतिहास की जो है झलक देते हैं, एक जो हमारा अधूरा अध्याय था उस अध्याय को वो कंप्लीट करते हैं
1: जी।
3: क्योंकि ये जो पट्टिकाएं हैं, इसके अंदर 21 जो है बड़ी प्लेट्स हैं और इसके अंदर 3 छोटी प्लेट्स हैं, और उसके साथ साथ ये एक रिंग से बंधी हुई है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक जो है रिंग लगी हुई है, जिसमें चोलों के जो शासन काल का स्टैंप है वो स्टैंप लगा हुआ है, और उसके अंदर स्टैंप में आप अगर देखें तो वो 2 मछलियां बनी हुई है और एक बैठा हुआ आपको टाइगर नजर आता है, जो कि चोलास का जो है वो सिंबल था, शाही जो है वो सिंबल था
1: जी।
3: ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ताम्र पट्टिकाएं हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हम देखते हैं जो चोल शासक राजराज प्रथम थे, उन्होंने अनुदान दिया था, एक मोनेस्ट्री थी यहाँ पर नागपट्टिनम में, एक जो है मोनेस्ट्री बनाई गई थी, तो वहां पर एक गांव था अनई मंगलम, उसको जो है अनुदान में मोनेस्ट्री को दिया गया था, और वहां का जितना राजस्व था यहाँ पर इस मोनेस्ट्री को, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को अनुदान में दिया गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो विहार था या मोनेस्ट्री थी, उसको किसी चोल शासक ने नहीं बनाया था, बल्कि जो है एक शैलेंद्र जो शासक थे साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि ये जो ताम्र पट्टिकाएं हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, भाषा क्या है, तो हम देखते हैं कि ये द्विभाषी है। इसका जो पहला पोर्शन है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और दूसरा जो उसका भाग है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। जो पहला भाग है संस्कृत भाषा, अगर आप देखें कि इस समय प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जितने भी अभिलेख आपको मिलते हैं, तो उसमें संस्कृत भाषा से वो अक्सर शुरू होते हैं, चाहे आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख हैं, उसके अंदर सारे अभिलेख आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख में भी संस्कृत भाषा का आपको हिस्सा मिलता है। ये जो संस्कृत भाषा जो है वो मुख्यतः इन्वोकेशन से शुरू होता है ये हिस्सा, जिसमें की स्तुति की जाती है ईश्वर की, जिससे वो साम्राज्य जो है जिसको अपना वो ईष्ट देवता मानता है
1: जी।
3: फिर उसके अंदर हमें जीनियोलॉजी मिलती है, वंशावली मिलती है चोल शासकों की। ये जो वंशावली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये

0: देखने को मिलता है कि चोल शासक अपने आप को एक लेजिटिमेट रूलर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने आप को विष्णु के भक्त बताते हुए अपने आप को सूर्यवंशी जो है शासक घोषित कर रहे हैं।
1: जी,
0: हम जानते हैं कि वो क्षत्रिय स्टेटस क्लेम कर रहे थे चोलास, तो यहाँ पर उनकी ये जीनोलॉजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं चोल शासकों की, उसको यहाँ पे बयां किया गया है।
1: जी,
0: तो इस पोर्शन को प्रशस्ति पोर्शन कहा जाता है और ये आपको ज्यादातर अभिलेखों में देखने को मिलता है, जिसमें कि बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं चोल शासकों की उनको मेंशन किया गया है।
1: जी,
0: दूसरा पोर्शन जो है वो आता है तमिल में, जो अनुदान दिया गया है इस विहार को उसका उसमें जिक्र किया गया है। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है किसी भी अभिलेख का, क्योंकि उसके अंदर वो सारे डिटेल्स होते हैं कि ये जो अनुदान दिया गया है एक पर्टिकुलर गांव का, जैसे हमारे संदर्भ में अनई मंगलम जो गांव है उसके राजस्व को अनुदान में दिया गया है, तो उसके अंदर बाउंड्री बताई जाती है
1: जी,
0: कि उस गांव की बाउंड्री क्या है, उसका मेजरमेंट होता है वो उसके अंदर दिया गया होता है, और उसके अलावा क्या राजस्व लिया जाएगा, क्या एग्जेम्पशंस रहेंगे उनसे, क्या छूट होगी, वो सारे डिटेल इसके अंदर दिए जाते हैं।
1: जी, तो अपने समय का ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है।
0: बिल्कुल,
1: जिसमें हमें उस साम्राज्य के बारे में भी पता चलता है, जो घटना घटित हुई है यानी जैसे भूमि अनुदान की गई है उसके बारे में पता चलता है, फिर उससे जुड़े नियम भी हैं और भाषाई संपन्नता भी पता चलती है, और ये भी पता चलता है कि वो साम्राज्य अपने आप को लेकर, अपने स्तर को लेकर कितना गंभीर है, किस तरह से वो अपने प्रशासन से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें वो इंगित कर रहे हैं, चाहे वो अपनी स्टैंप हो या वो भाषा हो, वो सब बता रहे हैं। तो ये जो छोटा सा उपहार है ये हमारे सामने इतिहास के बारे में इतना कुछ बताता है, ये आपने बताया हमें। जी, बहुत ही रोचक ये जानकारी है। और मैं यहाँ अब देवेश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा मनीषा जी ने कहा कि हमें चोल साम्राज्य की विशेषताएं इस ताम्र पट्टिका से पता चलती हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम चोल साम्राज्य पर अब ध्यान दें तो साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, किस तरह से वो हमारे समाज से आज जुड़ती हैं।
2: मनीषा जी ने बहुत अच्छी विवरण दिया इनके जो स्पेसिफिक्स हैं ताम्र पट्टिकाओं के, पर कुछ चीजें होती हैं बिटवीन द लाइंस,
1: जी,
2: वो समाज के बारे में बड़ी अच्छी हमें अंतर्दृष्टि देती हैं।
1: जी,
2: तो बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में चोल वंश की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पुस्तिकाएं हैं उनमें दक्षिण भारत का इतिहास
1: जी
2: उसकी ओर कभी कभी उपेक्षा रही है, तो इस वर्णन से उसकी ओर लोगों का ध्यान जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और खास तौर पे चोल वंश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चोल वंश करीब 400 साल तक कायम रहा
1: जी,
2: और इसको इंपीरियल चोलास भी इनको कहते हैं, इनके पहले अर्ली चोलास भी थे, उन सबको मिलाकर तो यह करीब 1000 साल का इनका शासन है। लेकिन जो 800 यानी 9वीं शताब्दी से करीब शुरू होता है, विजया लू जो प्रथम शासक थे इनके और राजेंद्र तृतीय 13वीं शताब्दी तक, तो ये करीब 400 साल तक इनका शक्तिशाली शासन रहा। ऐसा बहुत कम है, मुगल खाली 250 साल तक शासक किए थे, सल्तनत का शासन भी करीब 250 साल का था, मौर्य वंश तो केवल 150-200 साल का था
1: जी।
2: तो इतने लंबे शासन करने वाले और जो ओवरसीज जिनका एक्सपेंशन था इंडोनेशिया तक, मलेशिया और कंबोडिया, तो यहाँ भारतीय संस्कृति और को ले जाने वाला ये जो महत्वपूर्ण इतिहास है
1: जी,
2: उसकी ओर ध्यान आकृष्ट होता है इस वर्णन से। और इन ताम्र पट्टिकाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे आपने पूछा कि जो और समाज के बारे में हमें क्या बताती है। पहली बात तो यही है कि ये शिव भक्त थे चोल वंश के राजा, लेकिन वो एक बुद्ध विहार को लैंड ग्रांट दे रहे हैं
1: जी,
2: पूरे एक गांव का राजस्व उसके लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये जो हमारे आज भी जो हमारे शासन की नीति है, सबका साथ सबका विकास
1: जी,
2: ये वही नीति उस समय भी दिख रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो सभी धर्मों को पैटर्नेज दे रहे थे
1: जी,
2: कोई भेदभाव नहीं था, सर्वधर्म संभाव की थोड़ी सी झलक इसमें दिखती है
1: जी।
2: वास्तव में जो दक्षिण का इतिहास शुरू होता है उस संगम युग से हमें उल्लेख उसका विवरण मिलने लगता है। उस समय तक कई धर्म धार्मिक भावनाएं जैसे यहाँ का जो इंडिजिनस गॉड्स थे मुरुगन, उनके बारे में संगम में काफी वर्णन है। अभी पूरी तरह से जो वैदिक कल्चर है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ था बीच में, बल्कि जैन और बौद्ध

0: का ज्यादा प्रभाव था इस इलाके में। लेकिन पल्लव वंश और बाद में खासतौर पर चोल वंश के काल में शिव भक्ति, विष्णु भक्ति, ये सब ज्यादा स्थापित हुए और ब्राह्मणों को माध्यम बनाकर कृषि का विस्तार किया गया
1: जी।
0: अग्रहार उनको यही अनुदान दिए जाते थे ताकि वो गांव स्थापित करें
1: जी।
0: तो ये सब भी हमें पता चलता है। और एक बहुत बड़ी जो अच्छी चीज पता चलती है, जो उस समय के और हमारे समाज की विशेषता रही है, कि स्थानीय गांव के स्तर पर भी और शहरों में भी असेंबलीज होती थी
1: जी,
0: जिनके माध्यम से स्वशासन काफी हद तक चलता था। राजा कोई दिक्कत आए तो वो लोग हस्तक्षेप करते थे, लेकिन काफी चीजें लोग अपने स्वशासन के स्तर पर निपटा लेते थे
1: जी।
0: तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज इन पट्टिकाओं से भी पता चलती है
1: जी। तो हमें पता चला कि सर्वधर्म संभाव जो है उस वक्त था, फिर सबका साथ सबका विकास जो हम आज सुन रहे हैं, ये भावना उस समय भी थी। और स्वशासन आपने बताया कि लोग अपना शासन खुद चलाते थे, जैसे हम आज देखते हैं कि स्थानीय इकाइयां हैं, पंचायत है, फिर उसके बाद जिला स्तर पर है, तो ये हमें चोल वंश में भी देखने को मिलता है जी। ये रोचक बातचीत हम जारी रखेंगे। मैं आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ। कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप?
0: मेरी पसंद का तो देशभक्ति के कई गीत हैं, तो जो इसमें हमारी भारतीय संस्कृति झलकती है, तो आप है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ये सुनवा दें
1: जी। जब

0: इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य के बारे में और अपने देश लौटी ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जो चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम में हमारे दो विशेषज्ञ हैं, देवेश विजय जी हैं, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और शोध कार्य से आप जुड़े हैं। इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की ही प्रोफेसर हैं मनीषा अग्निहोत्री जी। इतिहास की आप प्रोफेसर हैं, लिंग्विस्टिक से आप जुड़ी हैं और आज हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की विशेषताओं की। तो देवेश जी, अभी गाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे स्वशासन का, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्वशासन था इसमें जो हमारे समाज के अलग अलग अंग हैं, अगर हम महिलाओं का जिक्र करें, अगर हम हाशिए पर आए लोगों का जिक्र करें या किसानों का जिक्र करें, तो कैसी नीतियां मिलती हैं, क्या जानकारी हमारे पास है इनसे जुड़ी?
1: देखिए, चोल वंश के इंस्क्रिप्शंस भी हैं और ताम्र पट्टिकाएं भी हैं
0: जी,
1: और ये बहुत अच्छी मात्रा में है। नॉर्थ में हमें इतने नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ इन्वेजन ज्यादा हुए तो काफी नष्ट हो गए थे, लेकिन दक्षिण के छोर पर हमें ये काफी इंस्क्रिप्शन सर्वाइव कर गए हैं। उससे हमें उस समय के समाज का काफी अच्छा दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। ये इस समय कास्ट सिस्टम तो कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे यहाँ का जो सामंतवाद था एक्चुअली वो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मणिपुर के कला और संस्कृति मंत्री खुराइजम लोकेन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया।

ने दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू. वक्त हुआ है 1:11 और 10 सेकेंड. गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज के साथ.

अभी जो आपने गीत सुना वो था साल 1959 की सुपरहिट फिल्म अनाड़ी से, और आवाज थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। इस गीत को पिक्चराइज किया गया था राज कपूर और नूतन पर। और अब हम सुनते हैं अगला गीत फिल्म पतिता से।

फिल्म पतीता से लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। और इस गीत को फिल्माया गया था उषा किरण पर। अगला गीत हम सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है रफी साहब की आवाज में।

रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म बरसात की रात से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में और ये एक संगीतमय फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने और निर्माण किया था आर चंद्रा ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला, भारत भूषण और श्यामा ने। अभी जो गीत हमने आपको सुनवाया था इसमें संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी साहब। ये फिल्म जो है वो दो प्रेमियों यानी कि मधुबाला और अमन हैदराबादी यानी कि भरत भूषण के इर्द गिर्द घूमती है और क्योंकि समाज जो है इन्हें स्वीकार नहीं करता। बहुत ही कश्मकश को लेकर लिखी और प्रदर्शित की हुई फिल्म थी ये और 1960 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय बॉक्स ऑफिस फिल्म भी रही ये। 21वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये और आलोचकों ने इस फिल्म को काफी सराहा। और अब हम सुनते हैं अगला गीत गीता दत्त की आवाज में।

रफी साहब और आशा जी की जुगलबंदी, ओपी नैयर साहब का जादुई संगीत और कमर जलालाबादी के शब्द आज भी जब हम सुनते हैं तो मन नाचने का जरूर कर उठता है। फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज और ये फिल्म आई थी 1958 में। जब नाचने का मन हो ही गया है तो अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज में।

0: मेरा जिम्मा है किसी को भी अगर होश रहे।
1: हाय हाय हाय हाय सस्ते है कुछ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन बेस्ट के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक के बाद समाप्त हो गई। इस हड़ताल के कारण पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित थीं। यात्रियों को यात्रा के लिए लोकल ट्रेन, मेट्रो सेवा, टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ा। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने पर अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

सारे फूल जो फूल होने का दावा करते हैं तुम्हारे लिए है, वो सारे फूल जो फूल होने का दावा करते हैं तुम्हारे लिए है, जो फूल बनेंगे आगे चलकर उन्हें भी अपने पास रख लो। खिलने वाले फूल तुम्हारे लिए खिलेंगे, जो फूल नहीं हैं वो भी फूल बनेंगे तुम्हारे लिए, जो मुरझा गए वो फूल भी तुम्हारे लिए लौट कर आएंगे एक दिन।

107.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12:25। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी एक ऐसा खास प्रोग्राम जहां पर हम रात के सुरों को, रात के दर्द को, रात के एहसास को अपनी बातों से, कुछ गीतों से और कभी कभी शायरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की आवाज के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ।

सच कहूं तो मैं इस गजल को जब सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वक्त रुक गया है, बस हवा कहीं ना कहीं महसूस हो रही है और उस ताजगी में मैं भीगती चली जा रही हूँ। जगजीत सिंह की आवाज और शब्द थे नवाज देवबंदी साहब के। इश्क में ऐसा ही होता है कि हम कभी ना कभी, हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी किसी खास

इंसान के आने की आहट जरूर महसूस की होती है, और जब उस इंसान के आने की आहट हम महसूस करते हैं तो हमारा दिल और दिमाग एक अजीब से एहसास से गुजरने लगता है, और वो एहसास शायद शब्दों में नहीं गजलों में ही बयां होता है। अगर आप भी इस गजल को सुनकर यादों के गलियारों में निकल गए हैं तो आप लौट आइए, क्योंकि अगला गीत आपका इंतजार कर रहा है। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में।

ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें दिल अपना कहता है। दुनिया में लोग न जाने कितने चेहरों से मिलते हैं, रोज हजारों लोग हमारी नजरों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा इंसान होता है जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को पसंद आता है। तो अगर आप भी इस वक्त किसी की यादों में खो गए हैं, या आपका वो खास आपके बिल्कुल सामने बैठा है, तो इस धुन में खुद को बह जाने दीजिए, क्योंकि अगली गजल आपका इंतजार कर रही है। अगली गजल आशा जी की आवाज में।

कहते हैं मोहब्बत में मांग ही क्या होती है, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी तवज्जो और बहुत सारा भरोसा। और जब ये सब मिल जाता है तो दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, प्यार की ये मदहोशी अब कम ना हो। अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

पत्थर की दुनिया सबसे ईमानदार दुनिया, पत्थर की दुनिया सबसे ईमानदार दुनिया, नींद सबसे धोखेबाज सुख, तुम मेरी सबसे लंबी प्रतीक्षा, मैं तुम्हारी सबसे अंतिम दृष्टि, मौत सबसे ठंडी लपट, पहाड़ बारिशों के लिए रोए तो रोने की आवाज क्या हो, मैं हूं तो मेरे होने का क्या हो, तुम अगर हो तो तुम्हारे होने की आवाज क्या हो। स्वादिष्ट प्लविक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरभि। रात का दर्द, रात का एहसास, कुछ बातों और गीतों के माध्यम से। अगला गीत रफी साहब और लता जी की आवाज में।

वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपने एक बात नोटिस की, आज आसमान में चांद कितना मुकम्मल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में आज कोई खास महफिल सजाई गई हो। अक्सर लोग कहते हैं कि रात तन्हा होती है, सुनी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी की याद हमारे दिल में हो, चांद हो, तारे हो, सितारे हो, तो सब मिलकर एक मुकम्मल कहानी बनाते हैं। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। अगला गीत आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज में।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही. बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी. 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. 3:10 पर आपके साथ रहेंगी अर्चना गोयल, अर्चना सचदेवा. मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, आईएनएस दुनागिरी संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनू राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों ने सहयोग लिया। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिक्ष समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। इथोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रोस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की है। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने और अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are deciding factors.

रात की 3:11 और 22 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वो 70 का दशक, वो गानों की झंकार याद आती है। वो 70 का दशक, वो गानों की झंकार याद आती है। तुम्हारी एक झलक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कोई पूछे जो हमसे कि क्या हाल है इस दिल का, तो लबों पर बस तुम्हारी ही बात आती है।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना अमर अकबर एंथनी फिल्म से। सोमवार से इतवार का सफर कितना सुहाना है, सोमवार से इतवार का सफर कितना सुहाना है, इस बहाने से दिल को बस तुम्हारे करीब आना है। कैलेंडर की तारीखें तो बदलती रहेंगी उम्र भर, पर हमारे प्यार का ये हफ्ता तो सदियों पुराना है।

किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में फिल्म अपनापन से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार करने से पहले ये बहुत जरूरी होता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें, जो कि इस गीत में भी बताया गया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा फिल्म दुनियादारी से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं छलिया बाबू फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

चलो एक बार फिर से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। चलो एक बार फिर से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दुनिया को छोड़ो, खुद से मुलाकात करते हैं। चल कहीं दूर निकल जाए जहां कोई जानता ना हो, बस तुम मैं और खामोशी की बात करते हैं।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दूसरा आदमी से अभी आपने ये गीत सुना। इतनी वफा, इतना सुकून, इतनी दीवानगी अच्छी नहीं। इतनी वफा, इतना सुकून, इतनी दीवानगी अच्छी नहीं। हद से ज्यादा चाहना भी कभी कभी मुकद्दर को रास नहीं आता। आइए सुनते हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म छाया से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म मुद्दत से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म श्री 420 से।

दोस्तों हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ एफएम गोल्ड चैनल पर और कुछ ही पलों में आप सुनेंगी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपनाने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय वन कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारे जाने कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish Ibrahim. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
1: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच

सुबह के 4:11 और 14 सेकंड हुए हैं। सुबह की इस सुहानी बेला में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और आप सब आजकल छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होंगे और

0: मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आस का पंछी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जीवन में खुशी गम साथ साथ ही चलते हैं। खुशी है तो उसमें भी सहज रहिए और गम है तो उसमें भी।
1: उठ सबके

बातों बातों में फिल्म से अभी आपने गीत सुना अमित कुमार परल पद्म से और लता मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों जिंदगी में कभी हम जीत जाते हैं तो कभी हार जाते हैं, कभी पास होते हैं तो कभी फेल हो जाते हैं। पर अगर हम कहीं फेल होते हैं या कहीं हार जाते हैं उसमें भी हमें निराश नहीं होना है, फिर भी आगे बढ़ते जाना है।

आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में फिल्म सीता और गीता से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं दिल की राहें फिल्म से, मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में जीने का ढंग आ गया तो आपके लिए हर कदम पर खुशी है, और फिर चाहे वो जिंदगी की कोई भी जंग हो, वो आप जीत ही जाएंगे।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म मेरी जंग से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं अगला गीत, पर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: 10 दिन बीत गए बैजू, मैं कहीं नहीं मैं तो थक गई चलते चलते।
3: अरे सावली, काबुल के गुलजार खान कह गए हैं कि तन हारो मन हारो धन दौलत हारो खुशी हिम्मत मत हारो, किस्मत पर भरोसा रखो। अभी तो हमारे पास पूरे 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं।
2: बैजू, चरिंदे जागे परिंदे जागे, यहाँ तक के मच्छर और मक्खी जागे, मगर ना जाने हमारे किस्मत कब जागेगी।
3: अरे वो तो अभी अंगड़ाई ले रही है, बस जागी समझो। अरे हम क्यों करती है पगली, मुस्कुराना मुस्कुराना, एक जरा सैंपल आपने थोड़ा सा।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म छूमंतर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्रभु की शक्ति से ही हमारा तन मन सब चलता है, पर साथ में अगर अपने पर विश्वास हो तो फिर देखिए आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे।

वाणी जयराम की आवाज में फिल्म गुड्डी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अगर हम किसी से प्यार से बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें भी उसके बदले में प्यार ही मिलता है, परंतु अगर हम किसी से गुस्से में बात करते हैं तो सामने से भी आपको गुस्सा ही मिलेगा। तो देखिए, अब आपने क्या करना है।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सोतन से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं गोरा और काला फिल्म से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनिएगा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूरनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले सहयोगियों

कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। सीबीएसई ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागीर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजा ने कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

सुबह के 5:11 और 11 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से भजन से जो गाया है अरुण कुमार ने।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनुरोध से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी को इतना सीरियस मत लीजिए कि आपके लिए भी जीना ही मुश्किल हो जाए। हंसी खुशी मस्ती से जिंदगी को जीना सीखिए। आइए सुनते हैं जमीर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।